मित्र हुंदा ही होए जिहड़ा मनुख दा भला लोचे, जिहड़ा मित्र मिले ते बुरे पासे लै जा, भला फिर होर दुश्मन दी की लोड़। जिहड़ा अखौती मित्र मिले, मित्रता दे नां थले बुरे पासे लै तो बुराइयां वाले पासे प्रेर लै जा, गलत कम्मां वाले पासे लै तुरे, या जेड़े मित्र दे आया जीवन दा कीमती समा आ जाई तुरिया चला जा, गलत गल्लां विच, निंदा चुगली विच, गलत खेडां विच, गलत कारियां विच मनुख दा कर्म भ्रिष्ट हुंदा चला जावे, वह मित्र नहीं दुश्मन है। क्योंकि जो कर्म असी करने ने उनका फल साडे सामने होना, अज नहीं कल नू, ऐस नहीं अगले जन्म नू, साडे कीते कर्म साडे सामने आ जाने। ते जेड़ा बंदा गलत कम्मां दी प्रेरणा करता है, उहदे नाल वड्डा दुश्मन होर कौन होवे। पर मनुखे भुलेखे च पिया होया, जिहदे नाल जी परच जावे, जेड़ा कोल बह के चार गल्लां करे, सुने सुनावे, उहनूं असीं मित्र समझने। हालांकि साहिबां ने पावन बाणी च बड़ी सख्त प्रेरणा कीती है। साहिब कहिंदे ने, कर मित्राई साहिब सिरसा साध स्यों नेचर पावे थां। जे मित्रता करनी है ना, नानक कचड़िया स्यो तोड़, टूंड सज्जन संत पक्या, तू मित्र लभने ने ते पक्के मित्र लभ, कच्चिया पल्लिया दे नाल की मित्रता पाउणी है, जिन्हां दा अपना कोई स्टैंड नहीं। अज कम करदे ने कल नूं पछताउंदे नजर आउंदे, अज कुकर्म करदे ने कल नूं उहनां कुकर्मां दे फल दे सामने रोंदे नजर आउंदे। निराए ही नहीं, ए जे कच्चे मित्र तेरे भी नाल निभ नहीं सकने, ओए जीवंदे विछड़े, जूंदिया ही जिंदगी च कोई औखा वक्त आ गया ते छड़ के तुर जाणगे। तू उहना मित्रा नाल सांझ पा जेड़े साहिब कहिंदे ने, ओए मोया ना जाही छोड़, इत्थे भी तेनू सुख देण ते दरगाह विच भी तेरा साथ दे सकण, उत्थे भी तेरी बौड़ी कर सकण, जिन्हां दे सदका जिन्हां दे नाल लग के उत्थे भी तेरा भला हो सके। संसार ते भी ऐसा तुसां वेखिया है, किसे भले आदमी नाल मित्रता ही होवे, किसे नेक बंदे नाल मित्रता ही होवे, कोई औखा सौखा वेला आ जावे, आवाज मार लो, बुला लो मित्र नूं कि मैं फसिया, गलत काम कर बैठा, भुल हो गई, गलती हो गई, या वैसे ही फस गया, मित्र आ जावे। जिस सभा सोसायटी दे सामने, जिस समाज के सामने असी मुजरम हाँ, उस मित्र दे कोल आके बह जाण दे नाल फिर पंच कहिंदे, ओ कहिंदे ने भई तू आ गई है, तेरा मित्र इस करके छड़ दे ने, तेरे कहण ते छड़ दे ने, तू इहदी शादी भरना ते छड़ दे ने, तेरा मित्र इहते लिहाज करदे ने, तेरा पुत्र इहते लिहाज करदे ने, तेरे भरा करके छड़ दे ने। चंगे बंदे दा प्रभाव पैंदा, जे कि उन्हां लोकां नाल जिन्हां ने दरगाह तक निभ जाना साडी सांझ होवे, उन्हां दे सदका उत्थे भी बख्शे जा सकदे, बल्कि उत्थे बख्शे जाण दी गल जे एक पासे रख दईए, जीवन विच ही मनुख भले लोकां नाल मिल के उन्हां दी रंगण च रंगिया जाके, ऐसी दशा आउंदी नहीं, ऐसी नौबत आउंदी नहीं कि मनुख कोलों कोई लेखा पुछण जोगा रहे। चंगे मित्रां ने मनुख नूं हमेशा सुधारिया। मित्र चंगा होए जिहड़ा सामने बैठ के प्यार नाले गल समझा दे। सजना जीवन विच विकार सोभा नहीं देते, माड़ियां आदतां माड़े कर्म तेरे जीवन नूं तबाह कर देणगे। ते ओ मित्र बड़ा चंगा है जेड़ा बाह फड़ के गुरुद्वारे लै आवे, गुरु नानक दे दरबार विच लै आवे, जेड़ा जिस वेले मेरे गुरु की गल करे, प्रभु की गल करे, बाणी की गल करे, जेड़ा मित्र ईश्वर की गल करे, भगती की गल करे, धर्म की गल करे ना, उहदे नालों चंगा मित्र सानूं संसार ते होर कोई नहीं मिल सकता। असां तां इह वेखिया आम तौर ते कि जिस मित्र नाल मन परच जावे उह चंगा मित्र है, या जिस मित्र दे मिलिया कुछ चार पैसिआं दा लाभ हुंदा होवे उह चंगा मित्र है। लेकिन महाराज कहिंदे ने, उह मित्र जिहड़ा प्रभु नाल जोड़दा, उस मित्र तों मैं अपना तन मन धनवार नहीं करदे, तन मन धन अर्पो तिसे प्रभु मिलावे मोहे, जेड़ा मेरी प्रभु नाल सांझ पुआ दे
ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਪਾਉਣ ਬਾਣ ਚ ਬਚਨ ਕਿਹਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰਮ ਪਰਿਓ ਠਾਕੁਰ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਤਿਨਾਂ ਦੇਖ ਮੇਰਾ ਮਨ ਧੀਰਾ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਦਰਗਾਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਬਿਰਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਾਂ ਚ ਟਿੱਕੀ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈਣਾ ਲੋੜਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤੱਕਣਾ ਲੋੜਨਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਮ ਹਰ ਸੇਤੀ ਰਾਤੇ ਸੰਤੋ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਮਨ ਰੱਖਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਰੰਗ ਚ ਰਹਤੇ ਹੋ। ਤੁਮ ਹਰ ਸੇਤੀ ਰਾਤੇ ਸੰਤੋ, ਨਿਭਾਹ ਲਿਓ ਮੋਕੋ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਤੁਰੋ ਤੇ ਨਿਭਾ ਦਿਓ ਤੁਰ ਤੱਕ, ਵਿਧਾਤੇ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਓੜ ਪਹੁੰਚਾਓ ਦਾਤੇ, ਉਸ ਦਾਤੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਿਓ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਚਰਨੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਪਏ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿੱਤਰ ਤੋਂ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਵਾਰਨਾ ਪਏ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿੱਤਰ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨਾ ਪਏ, ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਚ ਬੇਅੰਤ ਵਾਰ ਐਸੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਮਿੱਤਰ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਐਸੀ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂ। ਸੀਸ ਵੱਢੇ ਕਰ ਬੈਸਣ ਦੀਜੈ, ਵਿਣ ਸਿਰ ਸੇਵ ਕਰੀਜੈ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਰੀਜੈ ਜੀੜਾ ਨਾ ਦੀਜੈ, ਜਾਂ ਸੋ ਭਇਆ ਵਿਡਾਣਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਉਪਰੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੋਝ ਬਣ ਗਈ, ਮਾਰੀ ਜਾਈਏ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲੋਂ ਜੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੇ ਉਸ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇ, ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਰਾਮ ਕੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦੀਆ ਮਿਲਾਏ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਚ ਸਾਨੂੰ

ही मान सकता है जेड़ा अपने घर आ गया, जिदा मन भटक रहा है, काम क्रोध लोभ मोह हंकार दी अग विच जल रहा है। ए पटकिया होया मन किते टिकदा नहीं, जिवें अक दे अंब नालों तूंबा बिछड़िया, फिर पटकन तो बिना होर कुछ नहीं। जिधर दी हवा है हवा दे बुलियां विच तके खांदा फिरदा है। ऐसे तरह जिन्हां ने गुरु दे चरण छड़ के अपने निज घर नूं छड़ के जो कूड़िया पदार्थां दे नाल नेउ लाई बैठे हन, हजूर कहिंदे हन जो घर छड़ गवावना सो लगा मन माहे। जेड़ा घर छड़ जाना है उदे लई तू रात दिन भटक रहा है, ते जिथे जाए तुद वर्तना तिस की चिंता ना है। जिथे तू सदीवी काल वसना है, जेड़ा कार्य करन लई तू संसार ते आया है उस घर की कोई तैनू चिंता ही नहीं। ये शरीर भी एक घर है जिदे अंदर अकाल पुरख वाहिगुरु की जोत है। मनुख शरीर लई सब कुछ करदा है, चंगे वस्त्र पहनदा है, खांदा पींदा पहनदा, सुगंधियां लाउंदा, सेजावां मानदा, पर इसने आत्मा नूं जिस आत्मा दे सदके शरीर चल रहा है उसनूं भुखिया ही मार छड्या, उसनूं कदे नाम दा भोजन नहीं दिता, कदे गुरु दी कृपा दे बस्तर नहीं पहनाए, कदी सतसंगत दी सुगंधी नहीं लाई। हजूर कहिंदे ने जे तू सिमरन नहीं कर रहा, अमृत वेले जाग के

दुर्लभ देह पाई वड भागी, नाम ना जपे ता आत्म घाती, मर ना जाई जै बिसरत नाम, नाम भी होन जीवन कौन काम। हजूर कहंदे नाम तो बिना तेरा जीवन केड़े काम है, ओ पशु मर जावे ता

दस बालतन। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी माझ दी वार विच आप बख्शिश करदे हन कि 10 साल बचपन दे बीत जांदे हन, 20 रमण, 54 हो गया, हुण घर दे सामान इकट्ठे करन विच लग गया। 30 का सुंदर कहावे, 40 सी पर होए 85, 40 ते 50 साल दी उम्र तक इसने रात दिन एक करके अपने कार विहार तंदे कीते, पर परमेश्वर दे नाम दा कोई ख्याल नहीं कीता, नहीं उदा शुकराना कीता जिस वाहिगुरु ने अमोलक श्वास बख्शे सन। हुण 50 साल तो उत्ते जदों उम्र हो गई, बुढ़ेपा आ गया, 17 दा मत ही

0: जल रहे जल बिन कुंभ ना हो। ज्ञान का बतावन रहे गुरु बिन ज्ञान ना हो। ओ गुरु बिन ज्ञान ना हो।
1: पापा जी थोड़ी इस छबील के आसरे साडा पेंडा कटिया जाता है।
2: आसरा उसका आधार था। मैं देख सेवादार हाँ।
1: खुश रहो बाबा जी खुश रहो।
2: आप उधर ले पी। ओ ले पी।
3: जल पाया परमेश्वर पाया।
2: अब मोहे जलत राम जल पाया। राम अधिक तन जलत बुझाया। मन मारण कारण बन जाइए सो जल बिन भगवंत न पाइए।
4: सो जल बिन भगवंत न पाइए।
2: हाँ बेटी।
4: बाबा जी असि भी मोहे जल लभ रहे हैं। थोड़े को हजारों यात्री आते जाते शायद तुम्हें कुछ पता हुए।
2: कादा पता।
4: ए मेरे पति ने इन्होंने सुपने विच एक थां वेखी सी। पानी दी छपड़ी आदि कंडे ते बेरी दा दरख्त ते बेरी ते कां बैठते ने।
2: छपड़ियां ते कई ने ते बेरी दे दरख्त भी बेअंत हैं।
4: नहीं बाबा जी आज बेरी ते इक्को ही होगी जिस तो कां उड़ के छपड़ी च डुबकी लैंदे ने ते चिट्टे हो उड़ जांदे ने।
2: चिट्टे हो उड़ते जांदे ने।
3: हां बाबा जी ते नाली आवाज आ रही सी।
4: कागू हंस करे।
2: कागू हंस करे। कागू हंस कर ये तो गुरु नानक देव जी दी बाणी है। तुसी इंज करो सिर्फ गोंदवाल चले जाओ। उठे गुरु अमरदास जी का दरबार है। गुरु नानक दी अलाई बाणी का सोमा।
4: गुरु अमरदास।
2: हाँ बेटी उन्होंने हर चीज का ज्ञान है। उन्होंने दर्शन करदे ही तुहाडे पैर अपने आप तुहानू उस मंजिल वल लै जाणगे जिस मंजिल तुहाडे दिलां च तांगे।
4: किन्नी दूर है गोइंदवाल?
2: एथों थोड़ी दूर दरिया का पत्तन है। उथे बेड़ी पैंदी है। बस दरिया पार दे गोइंदवाल।
4: अच्छा बाबा जी असि चलने।
2: परमेश्वर भली करेगा। कबीर सेवा को दोए भले एक संत एक राम। राम जो दाता मुक्त को संत जपावे नाम।

प्राणी पिता माता धरत महत दिवस रात दुर्दाई दाया खेल सगल जगत चंगियाँ बुरियाँ माचे धर्म अधूरे करमियाँ को अपनी

अंदर कौतक वरता रहे। ड्योड़ी च भाई पुराणा जी बैठे दर्शन करन नू चित कीता उठे, सुलाखां दे परले पासे निगाह गई, सारा दिन मगदी रही अग दी रोशनी विच वेखे, कुरला उठे साहिबां दे शरीर ते पए हुए छाले, सिख कोलों प्यार विच बर्दाश्त नहीं होया, उन्हां सुलाखां नू सिखां नू फड़िया जोर दी झटका मारिया, साहिबां ने नेत्र खोले मुस्कुरा के वेखिया। धन गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह गुरमत सिखाउण वाले तू ही मुस्कुरा सकना, गुरमत तो बारा केड़ा मुस्कुरा रहे। मुस्कुरा के तकिया भाई पराणा की हो गया, पातशाह मैथों नहीं जरिया जांदा, ते साहिब कहंदे ने वापर रही ने मेरे शरीर ते जरिया तैथों नहीं जांदा। कारण करता जो करे सिर धर मन करे शुकराना, भाई गुरदास जी भाई पराणा मालक की रचना है, जो कर रहे हैं मेरे शरीर ते वापर रही है ते मैं सह रहा, तेरे को नहीं सह, तेरे शरीर ते आ गई ते की करेगा। बादशाह मैनू तुसी आ गया दियो, मैं तबाह कर दिया सारा कुछ, मैं फना कर दिया। साहब हस पे कह लगे भाई पराणा जितन फना करना होगा जिन्हें रचिया आपे कर ले, तेनू फना करन दा फिक्र कितों पै गया, तू फना करन दियां ताकत कितों आ गई तेरे विच। कहिंदा पातशाह तेरे चरणा विचों, ते साहिब हस के कहिंदे ने भाई पराणा जे मेरे चरणा चो तबाह करन दियां ताकत तेरे कोल आईयां ने ते फिर मैं ही नहीं तबाह कर सकदा, मैं जे तोड़ना फोड़ना चाहवां मैं नहीं कर सकदा। नहीं भाई पराणा, आपां कुछ करता पुरख की रचना विच कुछ बना सकीए कुछ उसार सकीए ते गल वखरी है, तबाहियां दी गल आपां नहीं सोचनी, आपां तां उसारियां दी गल सोचनी। मन नूं टिकाणे रख, हौसले विच रहो, उहदी रज़ा विच रहो। साहब उठे अपने आसन तो, उठे ते आके मोढे ते हथ रख दिता, सिखां विचों पार करके प्यारा जिहा हथ भाई पराणे दे मोढे ते रखिया। ओ जिहड़ी अंदर जप तप दी शक्ति उछाले मारन लग पई सी सारी दबा दित्ती, ठंड वरता दित्ती। आ गए बाहरों पैरुए, उन्हां ने आके भाई जी नूं बड़ा कुटिया बड़ा मारिया, पर मालक दी बख्शिश कीती होई, धन गुरु अर्जन साहब दी बख्शिश कीती सहनशीलता सदका, फिर भाई पराणे ने हाए नहीं कीती, सी नहीं उचारी, वाहिगुरू वाहिगुरू जपदिया होया बेसुरती तक तां पहुंच गए, लेकिन हाए नहीं आखी क्योंकि रजा च रहना आ गया। रजा च रहना आ जावे ना ते फिर हाए नहीं मुंहों निकलदी, शुक्र मुंहों निकलदा है।

हर वक्त तेरे मन दी हरेक कामना पूरी कीती है। सेवका वांग उस दी भगती करदा रहो। अते हे दास नानक आख मैं

तेरी कुदरत तू ही जाने और ना दूजा जाने, तेरी कुदरत तू ही जाने और ना दूजा जाने। जिसनु कृपा करे मेरे प्यारे सोई तुझे पछाने, तेरे भक्ता को बलिहारा खान सुहावा सदा प्रभु तेरा। रंग तेरे अपारा, रंग तेरे अपारा, खिन में और खिने में औरा अचरज।

पर फिर सोचे मना ये जेड़े फुल तू सुचे समझ के लिया ए ता झूठे किवें जदों फुल खिड़दा ता पवरा उन्हों सुंघ जांदा।

पर सोचे मना जेड़ा दूध तू सुचा समझ के खीर बनाई ए दूध ता झूठ है किस तरह जदू गां चोई दी वच्छा छड़ी दे वच्छा गां दे थान चुंग दे ते किटाणुआ दे सदका।

शेर की आवाज आई। भगत जी उस पासे तुर पे, सामने शेर आया। शेर दियां अखां दे विच अपनियां अखां मिलाईयां तां ये गल कही।

जिस तरह रम्यो होया है, जिस तरह दर्पण शीशे दे विच साडा चेहरा मौजूद है, जदों शीशा देखांगे सानू साडा मूंह नजर आवेगा। इसे तरह ही वो परमेश्वर है, जदों देखांगे

चलिया एक दिहाड़े धन गुरु अर्जन साहब इस शब्द इंसान दा इस संसार तो जाना इस तरह बयान करते ने पता नहीं सी कि इस तरह परमेश्वर दा सदा आ जाएगा। साहब जी कहते ने इंसान हर काम महूरत देख के करता है। घर बनाना होवे घर बन जावे, ग्रह प्रवेश करना होवे या कोई ब्याह होवे, कोई भी खुशी का काम होवे ता इंसान सारिया तो पहला दिन देखता है, तारीख देखता है, महीना देखता है, साल देखता है, मुहूर्त देखता है। ये काम इस महीने इस तारीख नू करना है, इस वेले करना है, ताकि सारिया नू बुला लवां, किधरे कोई नाराज ना हो जावे कि मैनू नहीं बुलाया। गुरु साहब जी कहंदे ने ऐ इंसान तू हर काम महूरत ते कीता, दिन देख के कीता, साल देख के कीता, पर मरन लगिया तू कोई महूरत ना देखिया, कोई तारीख ना देखी, ए ना सोचिया इस दिन इस तारीख नू इस महीने इस मुहूर्त नू मरा सारिया नू दस दिया ताकि कोई नाराज ना हो जाए कि मैनू नहीं बुलाया। साहब जी कहते ने ऐ इंसान हर काम तू महूरत दे कर सकदा है, पर जड़ी मौत है ये महूरत नहीं देखन देंदी। मरण ना मूरत पुछया, पुछी थित ना वार, मौत ने ना दिन देखन देता, ना तरीक देखन देती, ना कोई महीना देखन देता। बस इन्ना ही पता लगा चंगा भला सारे परिवार नूं मिलके घरों तुरिया कि मैं चलदा आ जावांगा वापस, घरों ते तुर पिया। परिवार नूं मिलके बड़ा खुश है, पर की पता सी कि जांदियां जांदियां रस्ते विच ही परमेश्वर दा हुक्म आ जाना। घर वाले कारु डीकते पए ने, आ जाणगे शाम नूं मेल हो जाएगा, पर क्या पता सी उस तां वापस नहीं आना, पर उहदी मौत दा सुनेहा जरूर आ गया। रस्ते विच जांदे हैं हुक्म आ गया परमेश्वर दा, आया हुक्म पार ब्रह्म का, उस अल्लाह उस पार ब्रह्म दा हुक्म आ गया। जांदियां जांदियां रस्ते विच हुक्म आया मौत हो गई। साहब जी कहंदे ने बड़ा कुछ बनाया, हाली मन दे चाह भी पूरे ना होए, पर जद हुक्म आया तां छोड़ चलिया एक दिहाड़े, जो कुछ बनाया सी सारा कुछ एक दिन छड़ के तुर पिया। ना पत्नी दा ख्याल, ना बच्चियां दा, ना रिश्तेदारां दा, ना सजना मित्रां दा कि आखरी वेले किसे नूं मिल ही लवां, नहीं। परमेश्वर दा हुक्म बड़ा डाढ़ है, जद उहदा हुक्म आवे फिर किसे नूं मिलण दा समा नहीं मिलदा। हुक्म बड़ा डाढ़ है, आया हुक्म पार ब्रह्म का, छोड़ चलिया एक दिहाड़े। हुक्म आया और एक दिन सब कुछ छड़ के इस दुनिया तो अपने प्यारियां नूं रोंदा कुरलांदा छड़ के तुर पिया।

अराज मिल जोबन ग्रैसोबा रूपवंत जवानी जान वाला सब कुछ छड गया राज पाग जोबन जवानी ग्रह केंद्र ने कारण अपना कार सोबा सोना रूप सारा कुछ छड़ के एक दिन तुर पिया बहुत दर्ब हस्ती यार कोड़े लाल लाख बयानी हाथी कोड़े समय दी सवारी हर चीज एक दिन छड़ के जो बड़े चा नाल बनाई एक दिन तुर पिया।

बंके कहते ने पति जिन्ना दे पति मर गए जिन्ना वापस नहीं आना उन औरतां दे बारे साहब जी कहते नी तेन क्यों रहन विहानी उन्हां दियां रातां हुण किवें बीतन क्यों औलाद किन्नी भी नेक होवे रिश्तेदार किन्ने भी चंगे होण पर पति दी थां कोई नहीं लै सकदा साहब जी बाणी विच बयान करदे नी ਉਹ ਪਤਨੀ ਕਿਵੇਂ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਵੇ ਜਿਹਦਾ ਪਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।

कदी हसो ना, क्यों मौत एक सच्चाई है, जीवन झूठ है। असी लोग मौत नू भुला देने हैं, पर मौत इंसान नू कदी नहीं भुलदी। समय नाल ओ आके ले जांदी, क्योंकि ओदा हुक्म बड़ा डर है। पति ना रवे ते औरत दा जीवन कहो जे है, तन गुरु नानक साहब बाणी विच बयान करदे ने। औरत दे दर्द नू समझिया, अपने आप नू फिर कहन लगे, ऐ परमेश्वर, ऐ अकाल पुरख, तू मेरा पति है। जिवें औरत दा जीवन पति तो बगैर कुछ नहीं, तू मेरा पति है, तेरे बगैर मेरा जीवन भी कुछ नहीं।

नींदर नहीं आती, सारा संसार सौंदा है, पर मैं किवें सौवां। हाली ते आस सी तेरे नाल बड़ा जीवन बताना है, पर तू तो विच ही साथ छड़ गया। तू नहीं ता साहब जी कहते ने दुनिया एक बियाबान जंगल लगता है, ते ओ मां जिदा पुत ना रवे उदा जीवन कैसा। कहंदे ने एक वरी हिंदुस्तान दा बादशाह जिदा नाम अकबर, अकबर दी जदू मां मरी अकबर बड़ा रोया। दरबारी कहन लगे बादशाह तू क्यों रोना है, तू हिंदुस्तान दा बादशाह है, जहां पना आली जा, दिले इलाही शहनशाह, अनेक नामां नाल दुनिया तुहानू याद करदी सलाम करदी, तुसी क्यों रोंदे। अकबर बादशाह ने बड़ी कमाल दी गल कही, कहन लगा बादशाह कहन वाले शहनशाह कहन वाले तो बहुत ने, पर इको ही सी मेरी मां जिहड़ी क्या करदी सी वे अकबरा। हुण इस करके रोना के वे अकबरा कह के कौन बुलाएगी, क्यों जद मां कहंदी सी वे अकबरा ता मेरा मन खुशी नाल झूम उठदा सी। जो मां दी झिड़क विच भी आनंद है, ओ दुनिया दी सलामा विच नहीं।

इस वास्ते के है कि मां बाप नियामत ने विछोड़ा किसी का भी पवे विछोड़ा सहना बड़ा औखा है। मां मरे प्यो मरे पुत्र मरे पत्नी मरे चाहे पति मरे पर साहब जी कहते ने यह भी सच है मरना जरूर है यह भी सच है कि दुख सहना बड़ा औखा है। इस वास्ते ये बाणी दिती है कि परमेश्वर का सिमरन करो दुनिया नू नाशवान समझो ताकि इस दुख नू तुसी सह सको ये समझ सको ये हुक्म सी जिड़ा आया है उन्हें जाना जरूर है एक दिन असी भी जाना है।

सुंदर अखाड़े रण में जिते पवाड़े। हर इंसान ये चाहता है कि मैं किसे ना किसे ते हुक्म चलावा, मेरी हुकूमत होवे, दुनिया मैनू सलाम करे। इंसान लड़ाइया जितता है, तरक्कियां करता है, बड़ा कुछ बना भी लैंदा है। ये भी कहता है हों मारो हों बंदो छोड़ो, मुख ते एव पबाड़े। मुख कहंदे ने मूह नूं, मूह तूं इह भी कहंदा है मैं जिन्हों चाहवां उन्हों मार सकदा, जिन्हों चाहवां उन्हों छड़ सकदा। पर साहिब जी कहंदे ने दुनिया ते हुक्म चलाण वाला कल दी सलाह करके सौंदा है,

तू बेअंत को विरला जाने को विरला जाने। गाहे सूफी गाहे जाहिद गाह कलंदर में शब्द गाहे सूफी गाहे जाहिद गाह कलंदर में शब्द रंग हाय मुख्तलिफ दारिद बुते अजारे मा तू बेअंत अपनी माया आप सारी आपे देखन हारा नाना रूप तरे बहु रंगी सब तेरे निया तू बेन ब्रह्मा न जाने अंत न पावत देव सब मुन इंद्र महाशिव जो करी तू बेन अत ऊंचा ताका दरबारा

हिंदू पूजा कर दे और मुसलमान निवाज पढ़ दे। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कह रहे हैं, देहो राम मसीत सोई, पूजा ओ निवाज होई। देहोरा और मसीह पूजा अते निवाज इन्हां नूं एक ही समझो, क्योंकि जेड़े इन्हां विच फर्क समझदे ने उन्हां दे मनां विच ही नफरत रहिंदी। सदियां तों हिंदू मुसलमान इस मसले ते लड़दे झगड़दे आए, फर्क समझ के। कुछ लोग कहंदे ने कि सिख धर्म वक्खवादी है, पर सिख धर्म वक्खवादी नहीं, इह सिख धर्म दा ही उपदेश है। धर्म दे नां ते लड़न वालेओ सुनो,

राक्षस, जस, गंधर्व, तुरक, हिंदू नाम वक् हैं, पहरावे भी वक् है, देश भी वक् है, और इन चीजों का असर इंसान से होता है। पर सतगुरु जी कहते हैं अगर आप मन विच विचार करिए तो सानू किसी विच फर्क नजर नहीं आ

झगड़े वधाने वाले हो। अपने मन में एक गल सोचो, एक नैन एक कान, सारियां कोल इको वर्गियां अखां, इको वर्गा नक है, इको वर्गा शरीर है, सारियां कोल अखां ने, सारियां कोल कान, सारियां कोल शरीर, सारियां कोल बोली। खाक कहंदे ने मिट्टी, आतिश कहंदे ने अग, आप कहंदे ने पानी। परमेश्वर ने पंज तत मिला के पंजा तत्तां दा ए शरीर बनाया। साहब जी कहंदे ने चाहे कोई हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, संसार विच जितने भी इंसान हन सारे पंज तत्तां तो बने हन। ते फिर भाई फर्क की है, फिर ए झगड़े क्यों नहीं?

मुसलमान अल्लाह नु याद करता है, हिंदू राम नु याद करता है। ते गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कह रहे ने अल्लाह दा नाम लैण वाले है, कुरान शरीफ पढ़न वाले है, मुसलमान नु ए उपदेश, हिंदू नु की उपदेश है? पुराण पढ़न वाले हिंदू है, राम नु याद करन वाले हिंदू, अपने मन विच ए विचार कर। एक बंदा मसीत विच बह के निवाज पढ़ता है, वो अपने अल्लाह नु याद करता है। एक ब्राह्मण मंदिर विच बह के पूजा करता है, वो अपने परमेश्वर नु याद करता है। टंग दोनों दे अलग ने, एक निवाज पढ़ता है, एक पूजा करता है, पर ये सोचे है दोनों दा मकसद की है? मुसलमान अल्लाह नु याद कर रहे है, हिंदू अपने राम नु प्या याद करता है, मकसद ते दोनों दा

हिंदू और मुसलमान दो वडिया कौमा और दोनों का ही झगड़ा सदियां तो चलिया आ रहा है, पर गुरु नानक दे घर दा उपदेश की है कि जेड़े लोग रब दे नां ते लड़दे हन ओ पुल्ले और पटके हुए लोग हन। भाई साहब जी बयान करदे, चार वरन चार मजहबां

मन विच बखीली होवे, नफरत होवे, ते फिर मन विच प्यार नहीं हुंदा। ते साहिब जी बाणी द्वारा भी यही समझांदे ने कि मना विचों जे नफरत

गंगा, बनारस हिंदुओं वास्ते पूजनीक ने, मक्का काबा मुसलमाना वास्ते, मक्का काबा मुसलमान पूजते ने, गंगा और बनारस हिंदू पूजते ने, अगे भाई साहब की कहते हैं।

और कतेबा नू भुला दिता। वेद की पूजा हिंदू करता है, कतेब नू मुसलमान पूजता है। भाई साहब जी कह रहे ने वेदा और कतेबा का उपदेश भुला दिता है और दुनिया जिहड़ी है देखो लालच विच फस के शैताना दे राह ते चल पई है। शैताना दा राह नफरत ईरखा दुबदा और झगड़े।

सच किनारे रह गया, सच एक पासे रह गया। ब्राह्मण और मुलाने आपस विच पै लड़दे मरदे ने। भाई साहब जी कह रहे ने, अगर इंसान सच नू ना छड़े, सच पल्ले रखे, ते कदी भी झगड़ा नहीं होंदा।

अल्लाह दे राम दे नाम नु समझिया नहीं, झगड़े पाले और जिहड़ा ये जन्म मिले है झगड़िया विच गवा लिया, और आवा गाउण दा चक्कर जिहड़ा है ये उस तरह

चले आ रहे है कि सदियां तो उपदेश भी हुई हो रहे है कि भाई क्यों लड़दे हो, इंसान रब दा रूप समझो। ते जेड़े लोग शैताना वाला काम करते ने उन्हां दे राह छड़ दियो। भाई साहब जी बयान करते हैं, मंदिर ढा के मसीतां बनाईयां ने मुगलां ने, पर की मंदिर ढा के मसीत बनाने वाला अपने अल्लाह नूं प्यारा लग सकता है? कदी नहीं लग सकता। इत्थे एक गल याद रखनी, हर कौम दे विच भैड़े बंदे हुंदे हन, पर सारियां कौमां नूं माड़े कह देना यह ठीक नहीं। हर कौम विच कोई ना कोई भैड़ा बंदा जरूर हुंदा है, पर सारी कौम नूं माड़ा कहना यह इंसाफ नहीं। भाई गुरदास जी बयान करते ने वो गल्लां जिहड़ियां इतिहास है और जो

निवाज और भाई साहब जी कह रहे ने मुसलमाना विच रोजे ईद निवाज ये जरूरी कर दिते और संसार दे विच जेड़े मुसलमान हैं ओ इन्हां दे पाबंद हैं।

इस पौड़ी दे विच भाई गुरदास जी ने इस्लाम धर्म दा जो असूल है उहदे बारे दस्या कि मुसलमान वास्ते रोजे ईद निवाज जरूरी इन्हां दे पीर पैगंबरां दा इह उपदेश। पर जिस वेले मुगलां दा राज होया हिंदुस्तान ते तां औरंगजेब जिहड़ा कि इक जालम बादशाह सी उसने यह हुक्म कीता सी कि हिंदुस्तान विच हिंदू धर्म नहीं रहन देना, तां पंडित कृपा राम ने आनंदपुर साहब आके गुरु तेग बहादुर साहब दे दरबार पुकार कीती, साडे हिंदू धर्म की रक्षा करो। तो गुरु तेग बहादुर साहब ने अपना सिर दे के हिंदू धर्म की रक्षा की। और गुरु नानक साहब दे अवतार तो पहला भी ठाकुर द्वारे ढाए जाते रहे भाई गुरुदास।

जिड़े जालम कोल शक्ति आ जाए ओ फिर गरीबां ते जुलम करदे मारन गऊ गरीब नूं धरती उपर पाप बिथारा और धरती ते इतने पाप हो गए इतने पाप कि सच लभदा नहीं सी राजे जुलमी हो गए वजीर पाप कमाण लग पए अपने भले वास्ते अपने फायदे वास्ते लोकां नूं लड़ाना लोकां दा नाश कराना और आप खुश होना भाई साहब जी कह रहे ने

मोम वर्गा होना चाहिए, जिस तरह मोम पिघलती है और रोशनी देती है, इसे तरह ए मुसलमान तू भी किसी ने दुखी देखे ते तेरा मन भी मोम दी तरह पिघल जावे, आप भावे दुखी हो पर दूसरे नु सुख दे। मुसलमान मोम दिल होवे, अंदर की मल दिल ते धोवे, और दूसरे पासे ब्राह्मण नु उपदेश कीता, कहे कबीर जो ब्रह्म विचार सो ब्राह्मण कैयत है हमारे, जिड़ा ब्रह्म दी विचार करे, जिड़ा ब्रह्म नाल जुड़िया रवे, असी ते ओनू ब्राह्मण कहने हैं, क्योंकि जिड़ा ब्रह्म नाल जुड़ गया वो फिर जिधर भी जिस पासे भी देखेगा, वो जिधर भी देखेगा ओनू ब्रह्म ही नजर आवेगा। जे हर पासे ब्रह्म है, हर पासे परमेश्वर है, तो फिर किहदे नाल झगड़ा ते किहदे नाल लड़ाई, किहदे झगड़े खत्म हो जाएंगे। और गुरु घर का उपदेश है, फिर ते इंसान इहो ही कहेगा, ना को बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हमको बनाई। कोई बेगाना नहीं, कोई पराया नहीं, किहदे नाल लड़ा सारे ते

गुरु घर विच सिख धर्म विच अणख नाल जीवना, धर्म दे कित करनी, नाम जपना और वंड छकना, यह उपदेश है। और यही उपदेश सारिआं वास्ते सांझा है। अणख नाल जीओ, अपने धर्म विच पक्के रहो। पर धर्मी होण दा मतलब यह नहीं कि आपां दूसरिआं नूं माड़ा कहिए या दूसरिआं दी निंदिआ करिए। कमियां हुंदिआं हन, पर उन्हां कमियां नूं दूर करना इंसान दा फर्ज बनता है। जिस वेले धन गुरु नानक साहब दा अवतार होया, ए झगड़े उस वेले भी सन। ते गुरु नानक साहब जी महाराज जिस वेले मुल्तान देश गए, पीरां फकीरां दे नाल ज्ञान चर्चा हुई। पीरां फकीरां ने गुरु नानक साहब नूं सवाल कीता, पुछन गल ईमान दी, काजी मुल्ला इकट्ठे होई, वड्डा सांग वरताया लख ना सके कुदरत कोई। धन गुरु नानक साहब नूं सवाल कीता, ऐ बाबा नानक तू सारिआं दा सांझा, तैनूं मुसलमान भी मनदे ने, तैनूं हिंदू भी मनदे ने, पर सानूं इक गल दा जवाब दे। पुछन फूल किताब नू हिंदू वड्डा ते मुसलमान होई। सानू इक गल दस, ऐ बाबा नानक हिंदू वड्डा है कि मुसलमान वड्डा? हुण गुरु नानक साहब जी अगो जवाब की देंदे,

एके देहे एके बांध, इको वर्गी अखां, इको वर्गा नाक, इको वर्गा शरीर, इको वर्गी बोली। इंसान दा शरीर हड्डियां मासला बने, अंदर परमेश्वर दी जोत, अल्लाह दा नूर कह लो, परमेश्वर दी जोत कह लो, वाहिगुरु दा निवास कर लो। पर उदू हैरानगी होंदी है कि जद इंसान इंसानियत नूं भुल के एक दूसरे उत्ते जुलम करदा है। ताकत मिले ते ताकत नूं भले पासे लाना चाहीदा है। इंसान नूं इंसान दा घर नहीं साड़ना चाहीदा। इंसान नूं इंसान प्यार करे तां ही इस संसार विच आया उहदा सफल होवेगा।

गुरु साहबान धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने जितनिया भी लड़ाइया लड़िया वो किसी फिरके के खिलाफ नहीं, वो जुल्म के खिलाफ लड़ाई सी। जुल्म करने वाले का कोई धर्म नहीं होता। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का इतिहास पढ़ के देखो, उन्हां दे नाल हिंदू और मुसलमान पठान तक साथ दे के जुल्मिया दे नाल लड़िया करदे सन। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की फौज में हिंदू भी सन, मुसलमान और पठान भी सन, जिन्हां ने समझिया कि यह इंसानियत के भले वास्ते लड़दे ने। हथियार दो बंदे चुकते हैं, एक जुल्म करन वाला और एक जुल्म नू रोकण वाला। जिहड़ा जुल्म करदा है उहनू फिटकारा पैंदियां ने, ते जिहड़ा धर्म की रखिया वास्ते हथियार चुके, लोकां दे भले वास्ते हथियार चुके, जुल्म दे टाकरे वास्ते हथियार चुके, दुनिया हमेशा उहनां दी पूजा करदी है। तो आओ भाई आपां भी महापुरुषां दे राह ते चलीए और यह जिहड़ा उपदेश है इसनू अपने दिल विच थां लईए, उपदेश ते चलण दी कोशिश करिए। गुरु साहिबां दा उपदेश अणख नाल जीवना, धर्म की किरत करनी, नाम जपना और वंड छकना, जिहड़ा इन्हां गल्लां नू मन लवेगा उहदा जीवन

0: लोगों पर साथ जब आज सच जुगा सच है भी सच नानक होसी भी सच तन गुरु अमरदास निथाव्या दे थाओ
1: निथाव्या दे थाओ बाबा जी असि भी उन्होंने दर्शन करन आया किथे मिलेंगे
0: सचखंड विखे
1: सचखंड
0: हां बेटी गुरु अमरदास जी सुरगपुरी जाग राजे ने ता फिर साडे पागा च उन्होंने दर्शन नहीं निराश ना हो बेटे उन्होंने रूप गुरु रामदास जी तुंग पिंड नेड़े संतोख सर की सेवा करा रहे ने
1: तुंग पिंड
0: हां तन गुरु अमरदास तन गुरु रामदास
1: तन गुरु अमरदास
0: तन गुरु रामदास
1: किन्नी सोनी था है तुसी दो घड़िया आराम कर लो ते मैं किसी पिंडों जाके कुछ खान में लानी हूं नाले पता कर लांगे तुंग पिंड किन्नी दूर है अच्छा
0: छेती आना तन गुरु रामदास

0: हे परमात्मा, तुम्हारी पुकार सुन ले। माता के दरबार श्री के सपना साकार कर देता। तेरी लीला ब्रह्म भारी। धन गुरु अमरदास।
1: धन गुरु रामदास। रजनी
0: स्वामी
2: नस तो जाए सरोवर।

0: पत्नी, तू तान्य पुत्र, ते तान्य तेरी भक्ति। नानक भक्ता सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश।
1: नानक भक्ता सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश।
2: बेटी,
3: पिताजी,
2: मैं क्षमा कर दे बेटी।
3: पिताजी, माँ,
2: पुत्र, बेटी, मैं बड़ा शर्मिंदा।
3: इस तरह न को पिताजी।
2: हाँ बेटी, मैं गलसा, तू सच ही ऐसी जिस परमात्मा से तेरा विश्वास, वो सच में सर्वशक्तिमान, वो उस दिन लीला परंपरा है।
0: राजा दूरीचंद?
2: नहीं संत जी, सिर्फ दूरीचंद को मैं अपने अहंकार के कारण राजपाठ से लायक नहीं रहा। जेड़ी मेरी बेटी ने मैंने दसी है।
3: पिताजी।
2: बेटी, मैं इसलिए कह रहा सा तुसी घर जाओ।
3: नहीं पिताजी, जिथो मेरे पति ने नवा जीवन मिलिया, सारे लिए कोई थल सुलखनी।
0: रजनी ठीक कहती है राजा दूनीचंद, ऐसी सारी तीर्थ यात्रा ते तपस्या का फल समुचे तौर ते ऐसे स्थान ते मिलिया है। यह धरती बड़ी पावन है, तेन ऋषिया मुनिया का वरदान है। ऐ बेरी दुख पंजनी बेरी है, ते ऐ छपड़ी अमृत का कुंड है।
4: अमृत से इसे कुंड गुलाम दास जी ने पहला टक लगा के इस अमृत सरोवर का रूप दिता, जिथे अज लखा इंसान स्नान करके मन निर्मल के तन पंचन करते हैं। की हिंदू की मुसलमान की सिख की ईसाई, अमृत सरोवर के चौवां कूटा वाल खुले दर हर एक लिए सदा ही खुले रहते हैं।

हर वक्त तेरे मन दी हरेक कामना पूरी कीती है। सेवका वांग उस दी भगती करदा रहो। अते हे दास नानक आख, मैं उस प्रभु तो सदके जांदा हां

तब एक मानस देही पाई, मानस जन्म अमोल पायो, वृथा काहे गवाओ, गुर सेवा ते भगत कमाई, तब एक मानस देही पाई, इस देह को सिमरे देव सदे पज हर की से पजो गोविंद भूल मत जाओ।

जब लग बिकल पाई नहीं बाणी पजल रे मन सारन पानी अब ना पजस पजस कब पाई आवे अंत ना पजिया जाए ए तेरे अवसर ए तेरी बार

जानो ए तन मिथ्या जानो या भीतर जो राम बस्त है साचो ताए पछानो पई प्राप्त मान देवरिया गोविंद मिलन की ए तरी बरिया।

मनते पो जाए सचवा पार करो व्यापारी दरगे निभे खेप तुम्हारी एकाटेक रखो मन माहे नानक बोल आवे जा।